0: नमस्कार, आज हिंदी सामुदायिक रेडियो सेवा 107.8 FM में आपका स्वागत है। आज विस्कॉम प्रथम वर्ष से एक प्यार के विषय पर एक मनोरंजक खंड प्रदान किया जाएगा। प्रस्तुत कार्यक्रम में शामिल होंगे दमदार कहानियां, कविताएं, शायरी और हमारे छात्रों से गाए हुए गाने। आराम से बैठकर आनंदित हो जाइए। आज अपनी दृष्टिकोण देने आ रही है प्रियोमा, एक प्रेरणात्मक भाषण देकर।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियोमा यहाँ आज आप सबको प्यार के बारे में कुछ शब्द बताना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिए। जिसे भी प्यार में असफलता मिली हो, धोखा मिला हो, या जिसने अपने आसपास प्यार की कहानियों का दुखद अंत देखा हो, उनके मुंह से यह वाक्य सुना जा सकता है। पर एक पल के लिए सोचिए कि क्या सच में प्यार हमें दुख देता है? नहीं, यह प्यार नहीं बल्कि हमारी अपेक्षाएं और उम्मीदें होती है जो हमें दुख पहुंचाती है। ये रिजेक्शन होता है जो हमें दुख देता है, और फिर हम प्यार का न होना ही हमारे दुख का कारण बनता है। तो फिर क्यों ना प्यार उनसे किया जाए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, और जिनसे बदले में कुछ मिलने की उम्मीद भी ना हो। ना रहेगी उम्मीदें और ना पहुंचेगी दिल को कोई भी तकलीफ। प्यार करिए प्रकृति से और उन मासूम जीवों से जिन्हें धोखा देना नहीं आता। प्यार करिए उन जरूरतमंद लोगों से जिन्हें सच में प्यार की बहुत जरूरत है। जिस दिन हमें उनसे प्यार करना आ गया जिन्हें हमारे प्यार की सच में ज़रूरत है, उस दिन हमारी ज़िंदगी से प्यार को लेकर जो भी शिकायतें हैं वे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी, और शायद सही मायनों में हम प्यार का मतलब भी समझ पाएंगे जिसे आज तक दुनिया की कोई भी किताब नहीं समझा पाएगी। धन्यवाद।
0: अगली पेशकश है कविता किरण की आवाज़ में।
2: नमस्कार, आज मैं आपको एक प्यार की कविता सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है दिल मिलने को बिखरा था। बारिशों का इंतजार था, दिल मिलने को बेकरार था, एक तरफ जुदाई एक तरफ उनका प्यार था। कुछ अनकही अनसुनी बातें थी जुबान पर, दिल में कुछ शरारत भरा कुमार था। सोचा था जब मिलेंगे खूब सारी बातें होंगी, पर बातों को क्या, दिल तो प्यार का बीमार था। वो प्यार देता तो सारे दर्द और गुम दूर हो जाते, दिल चाहकर भी मिल ना पाया उनसे, डरता था फिर जुदा हो जाएगा। पल भर का तो दीदार था, दिल मिलने को बेकरार था, दिल मिलने को बेकरार था। धन्यवाद।
0: अब कहानी पेश करेगी श्रद्धा।
3: नमस्कार, मैं आज आपको एक 8 साल के बच्चे करण और उसके पिता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक शाम जब करण खेल रहा था, अचानक दरवाजे की घंटी बजी। वह भागकर रसोई घर के दरवाजे के पीछे छुप गया। उसके पापा थके हुए अपने काम से घर लौटे थे। जैसे ही उसके पापा रसोई घर की तरफ पानी पीने के लिए गए, करण दरवाजे के पीछे से उछलकर बाहर निकला। अचानक करण की इस हरकत से उसके पापा के हाथ से उनका फोन गिर गया। पापा ने गुस्से से करण को डांटा और एक थप्पड़ लगाया। करण रोते हुए अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद जब पापा का गुस्सा शांत हुआ तो वह करण के कमरे में उसे मनाने गए। तभी उन्हें मेज पर एक तस्वीर और चिट्ठी मिली। पिता और बेटे की तस्वीर के साथ चिट्ठी में लिखा था कि पापा, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और मुझे आप पे बहुत गर्व है। हैप्पी फादर्स डे पापा। ये देखकर पिता का दिल खुशी से भर जाता है और उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब पापा उसके कमरे में जाते हैं तो उन्होंने देखा कि करण एक कोने में बैठकर रो रहा था। पापा उसके पास जाकर उसे मनाते हैं। देखा आप सबने, आजकल की जिंदगी की दौड़ में हम सब इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनी जिंदगी से और अपने परिवार से प्यार करना भूल जाते हैं। धन्यवाद।
0: कान खोलकर सुनिए क्योंकि संजना एक पाक विधि पेश करेंगी।
4: नमस्ते, अगर हुई है टकरार और मनाना है अपने प्यार को, या फिर आपको लगता है कि आपकी प्यार की गाड़ी जरा धीरे जा रही है, तो इस रेसिपी के द्वारा निखारिए अपने प्यार का रंग। एक कप प्यार, एक चुटकी हंसी, 2 चम्मच खुशी, 1 चम्मच अनुकूलता, 3 चम्मच भरोसा, 1 कप सम्मान, 1 चम्मच कोमलता और थोड़ा सा धैर्य। इस रेसिपी को अपनाकर देखिए कि आपका प्यार का निखरता हुआ रंग।
0: धन्यवाद। हंसने के लिए तैयार हो जाइए, आफरीन आपको चुटकुले सुनाएंगी।
5: लड़का, तुमसे एक बात कहनी है। कल जब तुम कॉलेज गई थी तब मैं तुम्हारे घर गया था। लड़की, फिर? लड़का, लगता है अब हमारी शादी नहीं हो पाएगी। लड़की, क्यों? पापा से मिले थे क्या?
6: लड़का, नहीं, तुम्हारी छोटी बहन से मिला था।
5: आपने कभी सोचा है आई लव यू का आविष्कार कौन से देश में हुआ?
6: मेरे ख्याल से चाइना में।
5: इनमें सारी खूबियां चाइना की ही हैं, ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो जिंदगी भर, ना चले तो शाम तक का ठिकाना नहीं। तुझे पता है, मैंने उस लड़की के लिए सिगरेट पीना छोड़ दिया, बाहर जाना भी छोड़ दिया, जुआ खेलना तक भी छोड़ दिया। दोस्त, तो फिर उस लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेता? अब यार इतना सुधर गया हूँ, सोचता हूँ दूसरी ही पटा लूँ।
0: मैं शायर तो नहीं, मगर मरियम आपको शायरी सुनाएगी।
4: अर्ज किया है, जब किसी के सांसे किसी की अरमान बन जाती है, जब किसी की हंसी किसी की मुस्कान बन जाती है, प्यार कहते हैं उसे जब किसी के सांसे किसी की जान बन जाती है। अर्ज किया है, दिल में हो आप तो कोई खास और कैसे होगा, यादों में आपके सिवा कोई पास कैसे होगा, हिचकियां कहते हैं आप याद करते हो पर बोलोगे नहीं तो एहसास कैसे होगा।
0: अभी परोमा प्यार के विषय पर 5 दमदार चलचित्र के नाम देगी।
7: बॉलीवुड और प्यार साथ चलते हैं, प्यार का मतलब बॉलीवुड से अच्छा कौन समझा सकता है। अब मैं आपको ऐसी 5 फिल्में बताने वाली हूँ जो प्यार पे आधारित है। पहली कुछ कुछ होता है, जो 1998 में आई थी। इस फिल्म की यह खासियत है कि इसमें बताया गया है कि प्यार दोस्ती है। अगर एक लड़की दूसरे लड़के की अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो उनमें कभी प्यार नहीं हो सकता। दूसरी मूवी है मोहब्बतें, जो 2002 में आई थी। इसमें पहला प्यार, पहली दोस्ती, पहली नशा और पहले प्यार के बारे में बताया गया है। इस फिल्म की यह खासियत है कि कोई तुमसे प्यार करता है तो तुमसे करे, तुम जैसे हो वैसे करे। अगर कोई तुम्हें बदल के प्यार करना चाहता है तो वो सौदा होता है, और प्यार में कभी सौदा नहीं होता। तीसरी मूवी है दिल धड़कने दो, जो 2015 में आई थी। हम हमारे परिवार के बारे में कैसे नहीं बात कर सकते जब परिवार ही हमारा सब कुछ है। इस फिल्म की यह खासियत है कि परिवार में एक दूसरे से प्यार करना और निभाना सिखाया गया है। चौथी फिल्म है ये जवानी है दीवानी, जो 2013 में आई थी। इस फिल्म की खासियत यह है कि अगर तुम्हारा प्यार सच्चा हो तो वो लौट कर ज़रूर आता है, अंत में प्यार की ही जीत होती है। पांचवी फिल्म है रामलीला, जो 2014 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में यह खासियत है कि दुश्मनी कैसे प्यार में बदल जाती है, प्यार का दुख और सुख, प्यार के लिए कुर्बानी, प्यार का फर्ज, प्यार में पागल हो जाना। बेशरम बदतमीज खुदकर्श होता है, पर प्यार ऐसा ही होता है। तो अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि प्यार ही तो है वो जादू जो उम्र भर हमें जवान बनाए रखता है। धन्यवाद।
0: श्वेता आपको मधुर गानों के बारे में बताएगी। चाहत और तेजसा इन गानों को मीठी आवाज में गाकर सुनाएंगी।
8: नमस्कार, आज हमारे बीच है दो बेहतरीन गायक, चाहत और तेजसा, जो हमारे लिए 3 प्यार के गीत पेश करने जा रहे हैं। उनका पहला गाना है मेरी सपनों की रानी। यह गाना किशोर कुमार साहब ने गाया है और इस गाने में प्रेमी अपने प्रेमिका को ढूंढता पाया जाता है। इनका दूसरा गाना है तुमसे ही, जो जब भी मेट में पेश हुआ था। इस गाने में खूबसूरत लफ्ज इरशाद कामिल जी ने लिखा है, जो दर्शकों ने बहुत सराहा। इनका तीसरा गाना है माहिबे, जो रहमान साहब के कई अनोखे गानों में से एक है। इस गाने के द्वारा रहमान साहब बताना चाहते हैं कि असली खुशी प्यार में ही बसी है। तो आइए तेज से और चाहत और अपने मधुर स्वरों से महफिल में चार चांद लगा दीजिए।
9: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आए।

की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। गीत पंखट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रूप

0: नमस्कार, आपका स्वागत है MOPCRS 107.8 FM, आर कम्युनिटी, आर रेडियो, आर प्राइड। जैसे विद्या बालन ने कहा था, फिल्में सिर्फ 3 वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ है विद्या वेंकटेश, जो हमारी सिनेमा की विद्या को बढ़ाएगी।
1: सिनेमा आज के मनोरंजन के मुख्य साधनों में सिनेमा का प्रथम स्थान है। मनुष्य खासकर आज के युवक युवतियों में मानसिक थकावट दूर करने के लिए सिनेमा से बढ़िया साधन और कुछ नहीं है। सिनेमा से आंखों का, कानों का और मन का मनोरंजन हो जाता है। इतना ही नहीं, आज के युग में सिनेमा बहुत से लोगों का जीवन आधार भी है। सिनेमा के बारे में पढ़ने के लिए भारत में ही नहीं विदेशों में भी विशेष पढ़ाई होती है। सिनेमा में बहुत से लोगों को धन भी मिलता है और कुछ लोगों के लिए वही प्राण है। सिनेमा से अन्य कलाएं जैसे संगीत, कविता, फोटोग्राफी, आर्ट डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, ज्वेलरी मेकिंग सभी विदेशों में भी तरक्की होती है। मेरा अटल विश्वास है कि हमारे कॉलेज की EM के कुछ छात्र सिनेमा के क्षेत्र में बढ़कर विश्व में कॉलेज का नाम करेंगी।
0: अब आप सुनेंगे सिनेमा की कहानी भार्गवी की जुबानी।
2: बॉलीवुड का अंश मुंबई से प्रारंभ हुआ है। 1970 में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म प्रोड्यूसर बन गया। भारतीय सिनेमा की शुरुआत 1930 को हुआ था। राजा हरिश्चंद्र भारत के प्रथम नाटकीय फिल्म था। दादा साहिब पालके को हिंदी सिनेमा का पिता माना जाता है।
0: कहा जाता है कि दुनिया परिवर्तन के बिना नहीं चल सकती, उसी प्रकार भारतीय सिनेमा भी हर फिल्म के साथ बढ़ती आई है। जो सफर आलमरा से शुरू हुआ था, उस सफर के बारे में निष्ठा हमें और बताने आ रही है।
3: आलम आरा सन 1931 में डायरेक्ट किया गया था। आदेश

0: ईरानी ने यह फिल्म डायरेक्ट किया।
1: आवाज का महत्व सिनेमा में जरूरी है, ऐसा आदेश ईरानी ने कहा। 80 साल पहले भारत और नाटकीय प्रेम करने वाले लोग आलम आरा का सालगिरह बनाए थे। भारत में अलग अलग प्रकार के भावनाएं बनाए जाते हैं। अमिताभ बच्चन भारत और करोड़ों लोगों का मन जीते हैं। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने हर भारत का दिल जीते हुए 20 साल बीत गया है। आज भी लोग इसे देखकर हंस रो पड़ते हैं।
2: तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयाँ, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान।
3: गानों में दर्द होता है, खुशी होती है और संदेश होता है। कोई भी फिल्म गानों के बिना अधूरी है और गाने बिना गीत का संभव नहीं है। हमारे भारतीय सिनेमा के दो जाने माने गीतकार गुलजार साहब और जावेद अख्तर साहब हैं। कृतिका और श्रीदा हमें इन महान गीतकारों के जीवनी पे बताएंगे।
4: गुलजार नाम के संपूर्ण सिंह कालरा हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध गीतकार, कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक एवं नाटककार हैं। इनकी रचनाएं हिंदी, उर्दू और पंजाबी में पाए जाते हैं। प्रारंभ में वे मुंबई में एक मैकेनिक का काम करते हुए खाली समय में कविताएं लिखने लगे। उसके बाद वे बिमल राय, ऋषिकेश मुखर्जी और हेमंत कुमार के तौर पर हिंदी फिल्म में काम किए। बंदनी फिल्म के लिए वे अपना पहला गीत लिखे और उसके बाद वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। 50 से भी ज्यादा फिल्मों को उन्होंने पटकथा, गीत रचना और निर्देशक का काम किया है। इनके देन के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया है। आंधी, इजाजत, कुछ और नज़में इनके कुछ मुख्य किताबें हैं। इन्होंने 20 से ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड और कई नेशनल अवार्ड भी जीते हैं। सन 2012 में उन्हें इंदिरा गांधी नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड भी दिया गया था। दूरदर्शन पर इनके लिखे बहुत कुछ सीरियल्स के प्रसारण हुए। सन 2013 में वे असम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी बनाए गए।

0: जावेद अख्तर भारत के जाने माने कवि, गीतकार और पटकथा लेखक हैं। उनका जन्म 17 जनवरी सन 1945 में हुआ था। वे 4 अक्टूबर 1964 में मुंबई पहुंचे और यहीं से उनके व्यवसायिक जीवन की शुरुआत हुई। काफी समय तक वे एक सहायक के रूप में काम किया करते थे और फिर उन्होंने अपने दोस्त सलीम खान के साथ जुड़कर कई फिल्मों की पटकथा लिखी है। इनमें से कुछ है अंदाज, शोले, सीता और गीता एवं डॉन। जावेद साहब अक्सर फिल्मों की कथा उर्दू में लिखते थे और उनके सहायक उसे दोबारा हिंदी में लिख देते थे। सलीम जावेद की जोड़ी 1980 तक ही थी, फिर जावेद साहब फिल्मों के लिए गीत लिखना शुरू कर दिए और इसी क्षेत्र में उन्हें काफी सफलता प्राप्त हुई। सन 1999 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2007 में पद्म भूषण दिया गया। उन्हें 14 फिल्मफेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनके जानी मानी फिल्में हैं कल हो ना हो, वीर जारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जोधा अकबर, बॉर्डर, रेफ्यूजी आदि। उनकी एक कविता जो हमारे दिलों को छूती है, मैं उसे अब पढ़ने जाऊंगी। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों जैसे आजाद रहना सीखो तुम, एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोलो अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा दिखाएं, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम।
1: चलो थोड़ा नच करें, चलो थोड़े मजे करें, चलो इस हफ्ते के टॉप 10 गानों की थोड़ी चर्चा करें।
2: नमस्ते, मैं दाशना आपके लिए इस हफ्ते के सबसे मशहूर गाने लाई हूँ। नंबर 10 पे है बन्नो, तनु वज मनु रिटर्न्स के फिल्म से।

0: भारतीय सिनेमा वह अकेली सिनेमा है जो हर हफ्ते एक नई फिल्म निकालती है। पिछले हफ्ते निकली फिल्म फैंटम के बारे में हमें प्रेक्षा बताएगी।
1: कबीर खान की फिल्म फैंटम मुंबई के 26/11 हमले के चार मास्टरमाइंड को नष्ट करने के एक आदमी की कहानी है। रॉ के प्रमुख उसे मुंबई में हुए एक आतंकी हमले के पीछे चार तोपों की हत्या एक विचारशील मिशन प्रदान करते हैं। जब तक दानियाल खान एक बदनाम सेना अधिकारी अलगाव की जिंदगी जी रहा है, वह उसे मदद करने का काम सौंपा जाता है जो नवाज मिस्त्री का सामना करना पड़ता है, जहां दानियाल के ऑपरेशन लंदन में शुरू होता है। उसका अगला शिकार डेविड हेडली है। फिल्म को नवाज द्वारा सहायता प्राप्त दानियाल अब लश्कर के सबसे खतरनाक आदमी हरीश सईदी के लक्ष्य रखा है, जहां अंत में पाकिस्तान में देश के लिए युद्ध ग्रस्त सीरिया के माध्यम से यात्रा कराता है। कबीर खान अब सिनेमाई छल करने की कला में महारत हासिल है। मैं फैंटम को दूंगी 5/4 स्टार और यही कहूंगी कि आप भी फैंटम देखें और फिर अपनी राय दें। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। और भी कई फिल्में रिव्यू जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ MOPCRS 107.8 FM।
0: आने वाले महीनों के मूवी रिलीजेस के बारे में हम स्नेहा जानकारी। नमस्ते। सितंबर 18 को कट्टी बट्टी आ रही है जो रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसमें इमरान खान और कंगना रनौत हैं। अक्टूबर 2 को सिंग इज ब्लिंग आ रही है जो अक्षय कुमार और एमी जैक्सन की है। ये मूवी प्रभुदेवा ने डायरेक्ट की है और सिंग इज किंग की सेकंड पार्ट है। अक्टूबर 22 को शानदार आ रही है जो एक और प्रेम कथा है जिसमें शाहिद कपूर, आलिया भट्ट और पंकज कपूर हैं। उसके पहले अक्टूबर 9 को जज्बा आ रही है जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन अपना कमबैक कर रही है। ये मूवी एक एक्शन ड्रामा है। नवंबर 27 को तमाशा आ रही है, ये एक इम्तियाज अली की प्रेम कथा है जिसमें रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण है। दिसंबर 18 को बाजीराव मस्तानी आ रही है, ये संजय लीला बंसाली की प्रेम कथा है जिसमें रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा हैं। आखिर में दिलवाले भी उसी दिन रिलीज हो रही है जिसमें शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, जॉनी लिवर और कृति सोनान है। ये भी एक प्रेम कथा और एक कॉमेडी फिल्म है।
2: आज हम लोग ने हमारी सबसे मनपसंद विषय बॉलीवुड और फिल्म के बारे में जो कुछ भी थोड़ा जानते थे

0: आपके साथ बता है। हम आप सबके आभारी हैं कि आपने हमारी बातों को इतनी रुचि से सुना। आपसे मुलाकात फिर होगी। नमस्ते और धन्यवाद।
1: यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के छात्रों ने प्रस्तुत किया है, पहले वर्ष वाले। आप सुन रहे हैं MOPCRS 107.8 आर कम्युनिटी आर रेडियो।